जनाब माता सन तपोस कर दे इन क्वेश्चन में कर दे छे द पाकिस्तान झंडा द अच्छा डिजाइन करे दा ता सो बिल्कुल मात वेली छे यानी कि SMS रातों के काल रातों के 0317-09-60-75 उमर दिन पिला सके 22 ग्रेड रहमानुल्लाह शॉपिंग सेंटर सर हम मिलावी की सिफात टोल प्रोडक्ट्स SIF88 सिफात सिफात ब्यूटी क्रीम सिफात ब्यूटी सोप सिफात फेस वॉश सिफात स्किन हर्बल स्प्रे सिफात जैतून हर्बल ऑयल दिन अलावा सिफात ओनियन शैम्पू सिफात आमला शैम्पू और सिफात ब्लीच सिफात विटामिन सी सीरम जमील खान गला मंडी एंड कॉस्मेटिक सेंटर हाजी जुबैर मरहूम मार्केट जी सर हम द सिफात टोल प्रोडक्ट्स में लावी की तब गोर नुम याद साते खास सब याद साते नुम नेम नाम SIF88 सिफात सिफात कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड 10,000 कुर्बान ओके जनाब वही सलाम वालेकुम आओ सलाम।

पहाड़ी के सबे छगरा चमकना मार्शल पर गाँव जबरदस्त है सालों में काबिल का जी भाई और बोरे बोरे सालों में का जिनोस्ता साबिल था मामूर था वजीर गोल था सदमान था बोरे बोले सोना मिला।

सरजाना सरजाना चेक चेक चेक चेक बच्चे जिला उठो, इतना गर्मी तो नहीं है, हाथ उठाओ वहाँ जबरदस्त सम्मान मजुन चेगी मानना मानना सबिल सबिल सलाम भाई जान वेलकम टू द मौज मस्ती शो आई एम सबिल मसूद फ्रॉम लांडी डाक देर जो तमन्ना शुक्रिया वैसे इंजीनियर साहब सलमी सफर तमिल सलमी ना वालेकुम सलाम देर जो तमन्ना आदिल खान सलमी ना रजी वालेकुम सलाम देर जो तमन्ना बेहदा बेहदा मनना इस्लाम जी भाई मुसलमी ना साबिर वजीर था मदुला मसीह था पटरा केट रखी थी वाह जबरदस्त जबरदस्त और यहाँ गाड़ी के चार संगे

0: वैसे आये माँ मेरे मरव तो फ्रॉम लंडन डाक मसला मौज मस्ती को ना लड़े किलड़े लड़े लड़े लड़े मना दे किस गरिया दे किस इस्माइल वसीर दे के ना वैसे जाने उत्तर के माँ आया दसों गला को दसों गला को
1: दादा
0: ब्याह का

0: टाइम का लगे चीजें ना सारों सिर्फ लेकर सही दो कोशिश रोकी कोशिश रोकी सही दो
1: छुंडे मिसरे कर गे तो प्रशा का गोरे आशकान
0: Pasuar zaman,

अच्छा डेर डेर छिदे मोदे पूरा मैसेज अच्छा डेरा डेरा मना मोदे पूरा मैसेज डेर जो था ना शुक्रिया बचेरा मजी अच्छा टोल पुखाशे फ्रेंड में जार के साइलेंट शो और मोचा दा सलमीना के और दा टपा दा डाले भी अच्छा अच्छा और टापे भी